0: Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
5: भाई निकाल माइक।
6: बाई बाई के प्यार कितना सुंदर।
7: The brand new reality TV show Bhojpuri Pawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
8: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
9: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
8: ताज़ा करें अपनी यादें।

हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाई हैं। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

सुनिए हाथ वैस गा नानक भक्तां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पथस्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

आहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए

0: Fraser London. This is Cargill on Breakfast. Leica Gold, traffic and travel.
1: Good morning, this is Cameron McGarvey here on the M4 Heathrow Spur Road southbound just before the tunnels heading in towards the terminals. We've got some delays there with the travel time already sitting at around 10 minutes, so do factor in a wee bit of extra time there. A13 westbound at Dagenham. I had a short spell of busy traffic between Raynham and Barking and the Lodge Avenue flyover, but that's already easing so far, so good news there. Public transport, District Line and Piccadilly Line. Due to some engineering works, trains still not stopping on the westbound stretches of the District and Piccadilly at Barnes Court, and we've got some minor delays reported on the Jubilee Line southbound. That's your traffic and travel.
2: Need anything from Tesco? How about Bella Italia's Easy, Ask Italian, Frankie and Benny's, Las Iguanas, Presso Italian and Pizza Express. Triple the value of your Tesco Club Card vouchers and save on meals out with selected restaurant partners. Check the app to know what you're sitting on. Tesco, every little helps. 18 plus Club Card app required. See tesco.com/rewardpartners for more info.
3: Yeah, like a gold. 10:35 a.m.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colours TV.
5: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुंचे.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रैवल से खरीदिए.
9: मगर साउथ हॉल ट्रैवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
9: गारंटेड.
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे.
10: साउथ हॉल ट्रैवल.
9: फोन 02085748410.
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
11: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
12: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
13: September महीना माँ हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे.
14: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो.
15: ए तमे स्त्री ओम रहे छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगो वालू बंद करो.
13: कॉमेडी किंग निमेशा अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रहे छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा. हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा. टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270. नाटक नु नाम याद राखजो.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
17: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
18: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन.
19: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
18: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
19: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
18: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
19: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
18: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
19: To book, call our London office on 020-3963-5755.
20: 7 Greens by Danube. Prime location,
21: high appreciation
20: in Dubai.
21: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
22: Jaam chalne lage.
21: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
23: Lester Miller is back.
24: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
23: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H. Thami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
24: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
0: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Leica Gold, traffic and travel.
2: Good morning, this is Cameron McGarver here. Now, the M4 eastbound from Junction 5 at Langley to Junction 4B for the M25. We did have an early broken down motorway that was recovered fairly quickly, but slow still on the approach. M4 onto the elevated section, still busy between Hayes and Brentford. A13 westbound at Dagenham picked up again from Raynham to Barking and the Lodge Avenue flyover, giving you a travel time there of around 15 minutes. Public transport, Central Line, we've got staff shortage. Underground station closed and trains not stopping on the Central Line at Holland Park. And we've got engineering works affecting the District and Piccadilly Line not stopping at Barnes Court.
3: The Mercedes-Benz Platinum Star event is now on. Whether you're considering electric or combustion, unlock exclusive in-store savings across the range. And that's on top of our existing offers, like the A200 AMG Line Executive Hatchback, now available from £299 a month. Book your appointment at your local showroom today. PTH offer ends 30th of September. Advance rental £7,411. 4-year lease. Subject to status and availability. T's and C's apply. Mercedes-Benz Finance.
0: Yeah, like a gold. This part of the show is brought to you by Durandar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
0: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 4260678
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं
9: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
10: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 hour line
11: Dad!
12: What's wrong, beta?
11: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
12: I will run down to the money exchange now.
11: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
12: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
13: Experience the ultimate escape. 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
16: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Gold Breakfast with Kajal.

0: This is like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com Start.

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Be part of a historic grand opening.
4: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
3: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
4: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
3: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: Track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Like a Gold. Like a Gold, traffic and travel.
2: Good morning, this is Cameron McGarvey here. Now the M4 eastbound from Junction 4 Heathrow to the Junction 3 for the Parkway at Hayes. Good news, traffic now easing after the earlier police incident. All lanes have now reopened. To Bow and the A12 Blackwall Tunnel, we've got the broken down lorry causing problems. The exit slip partially blocked at the Old Ford. Traffic is coping fairly well though. Elsewhere to the A2 Shooters Hill Road at Blackheath, we've got slow traffic and a travel time 10 minutes between the Common and Deptford Bridge. And to the Northern Line, we've got faulty lifts reported. Underground station closed, trains not stopping at Mornington Crescent. That's your traffic and travel.
3: People across the country are feeling all warm and fuzzy about their heat pumps.
4: Installing it during the renovation was an easy call. The bathroom tiles, however.
5: It's much nicer than your boiler. The place is just always warm and cosy like.
6: The government grant was the help we needed to start upgrading.
5: You get a lovely steady temperature. Walking around without my slippers, are you?
3: Feel all warm and fuzzy inside with a £7,500 government grant towards your heat pump at gov.uk/clean energy.
7: Eligibility criteria apply. See website for details.
0: Like a Gold.
8: This part of the show is brought to you by Durandar.
9: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
8: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
10: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
11: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
12: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934. Start to

0: ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at quality food branches
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: Laika Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Laika Gold और online सुनो LaikaGold.com पे.
5: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में।

0: बरसों पुरानी ये धुन भाई, आपको शायद सोचते होंगे कि कहाँ से ली ये ट्यून जो पिछले लगभग नियरली 50 वर्षों से मेरा साथ निभा रही है, मेरी पहचान बनती जा रही है। कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन है। अब कौन से गीत से जुड़ी है ये आप ढूंढते रहिए। माय नेम इज रवि शर्मा और मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। आज शुक्रवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 7 तारीख और वक्त हो गया हमारी आपकी मुलाकात का। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार और मोहब्बत भरा नमस्कार। गम की मौजों में डूबे तो तिनके को सहारा कर लेंगे, मिट्टी में ना रोलेंगे आंसू अशकों को सितारा कर लेंगे। अब बात मोहब्बत से बढ़कर मेरे जर्फ तलक आ पहुंची है, तू क्या ठुकराएगा हमको, हम खुद ही किनारा कर लेंगे। जिस तरह तेरा हर जुल्म सहा हंस हंस के पुराने यारों ने, तुम ये ना समझना वैसे ही नहीं यार गवारा कर लेंगे। गैरों को लगाकर सीने से तू गुलशन गुलशन घुमा कर हम दीवारों के शाने पर सर रख के गुजारा कर।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. L. Y. C. A. This is Leica.
0: भाई पहले लोग कहा करते थे कि शादी मत करना, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए।

0: पता नहीं चलता कैसे बदल जाते हैं पल में ये दुनिया के बदलते रिश्ते भाई। हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, ज़माना बदलता है, रिश्ते भी बदलते हैं और रास्ते भी बदलते हैं। ये भाई कड़वी सच्चाई है जीवन की। बल दो गीत बैक टू बैक हमने परोसी, आपने स्वीकार किए और मुझे यकीन है कि आपने पसंद भी किए। तो दोनों गीत भाई, पहला गीत तो दिल का क्या करें साहेब, हम उन्हीं पर मरते हैं और जुर्म बस इतना है कि हम उनसे प्यार करते हैं, ये होता है। दैट वॉज कविता कृष्णमूर्ति और ये गीत फिल्म जीत से लिया था। दूसरा गीत ये दुनिया के बदलते रिश्ते, फिल्म का नाम भी यही था बदलते रिश्ते। किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर गा रहे थे इस गीत को। मुझे यकीन है बहन भाइयों कार्यक्रम में शामिल गीत पसंद आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी शायद कहना चाह रहे हैं कि शर्मा जी आज बृहस्पतिवार नहीं है, ये दर्द वर्द निकाल फेंको, आज मस्ती में आ जाओ, वीकेंड शुरू हो रहा है, कुछ ऐसा सुना जाओ कि हमारा वीकेंड जो है एकदम टिप टॉप हो जाए। हो जाएगा जी, पाउंड का रेट सुनो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK, State Bank of India UK. क्या रेट दे रहे हैं आज? भाई अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो वो कहते हैं सही मौका है, रेट अच्छा है। आज का रेट एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127.65 रुपीस, 127 रुपए और 65 पैसे भारतीय मुद्रा में। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: Deirdre, look, it's the Bottomleys this time, sliding across their car bonnet.
6: Leave them be, Philip. They just claim confident.
5: Claim confident?
6: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
5: Deirdre? Deirdre? Come back here.
7: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.

0: Co food containers are recyclable, reusable, and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: September mahina ma hasano double dhamako fari aavi rahyo chhe. साउथ लंडन अने ल्यूटन मा टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153427 नाटक नु नाम याद राखजो।

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
5: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
7: संगीत की तरफ लौट आइए. गुड मॉर्निंग. मेरी जिंदगी तेरे साथ थी, मेरी जिंदगी तेरे साथ है, मेरी रूह में तेरा नूर है, मेरे होठों पर तेरी बात है. ना जुदा है तू ना अलग हूं मैं, मेरी जात भी तेरी जात है. कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ.

जमीनों की दूरी होती है भाई, दिलों की दूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी बहुत करीब होकर भी दिलों से बहुत दूर रहते हैं लोग, एक दूसरे से कटी रहती हैं जबकि बिल्कुल सटी रहती हैं। वेल, ऐसा देखने को मिलता है देशों के बीच। खबरों की ओर मुड़ रहे हैं हम। खबरों में भाई, शहबाज शरीफ के बाद तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान पहुंच रहे हैं सऊदी अरब। क्या कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल शाम इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बात हुई और इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच चुके थे। कल वो पहुंचे, आज अर्दोगान पहुंच रहे हैं। भाई क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि भारत के साथ इसराइल की दोस्ती जो है वो मुस्लिम देशों को चिंता में डालती है और इसलिए सऊदी अरब के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है और तुर्की के पास, वल उसके पास भी सैनिक अनुभव है, तो इसलिए भाई ये बहुत कोई स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कुछ बातचीत के लिए पहुँचे। इसके अलावा और क्या क्या है हमारे पास खबरों में, ये गीत पूरा सुन के आप संतुष्टि कीजिए, फिर आपको खबरें सुनवाते हैं।

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a gold.
3: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। थाईलैंड से खबर आ रही है, वहां एक स्कूल में गोलीबारी की घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 जख्मी हुए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से सटे नानथाबुरी प्रांत में बैंकॉक जिले में एक स्कूल में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। थाईलैंड के हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक आशंका है कि सस्पेक्ट ने स्कूल जाने से पहले अपने दादा और दादी की भी हत्या कर दी थी, क्योंकि उन दोनों के शव घर पर मिले हैं। थाईलैंड की हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है कि स्कूल में हुई गोलीबारी में 5 टीचर्स भी मारे गए हैं। ये घटना एक स्टूडेंट ने अंजाम दी है। सस्पेक्ट स्टूडेंट ने गोलीबारी करने के बाद खुद को भी जिस बंदूक से गोली मारी वो उसके दादा की थी, जो पहले एक स्कूल टीचर थे। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने स्कूल में हुई इस घटना की आलोचना की है। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि वहां कायस्थ पाठशाला ने अपना फैसला बदल लिया है। पहले उनके प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया था और पाठशाला ने उन्हें वहां प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब केपी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पहले प्रोग्राम स्थल को लेकर के जारी विवाद फिलहाल खत्म हो गया है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने कहा है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने इजराइल पर सीरिया को अस्थिर करने का आरोप लगाया है, जबकि इजराइल ने केवल अपने नागरिकों को हमलों से बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। विदेश मंत्री गिदोन सार के बयान में कहा गया है कि तुर्की के यही नेता दशकों से सीरिया की सॉवरेंटी का उल्लंघन करते रहे हैं और साथ ही इंटरनेशनल कानून पर दूसरों को उपदेश देते रहे हैं। हुती के हमलों में यमन की फौज के कम से कम 30 जवानों की मौत की खबर आ रही है। सेंट्रल यमन में हुती विद्रोहियों की तरफ से फौजी कैंपों पर किए गए हमलों में यमन की सरकारी सेना के कम से कम 30 जवानों के मारे जाने की खबर आ रही है। यह हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के बीच हुई लड़ाई के सबसे घातक अटैक्स में से एक है। यमन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि मारिब और हदरामाउत प्रांतों में कई फौजी कैंपों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया है। इन हमलों में कई सैनिकों की मौत हुई और कई जख्मी बताए जा रहे हैं। परिसीमन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री दोबारा से तय करने के बिल को हिमायत देने के लिए डीएमके ने केंद्र सरकार के सामने अपनी शर्त रखी है। ये शर्तें ऐसे समय में सामने आई हैं जब केंद्रीय सरकार के बिल के लिए जरूरी समर्थन जुटाने के मकसद से विपक्षी दलों से संपर्क बढ़ रहे हैं। और क्रिकेट से जुड़ी एक खबर भाई, आज भारत और श्रीलंका की 11 टीम के साथ एक अभ्यास मैच खेला जा रहा है। इसमें कैप्टन शुभमन गिल जो है दाएं हाथ की फिंगर चोट के कारण नहीं खेल पा रहे हैं। शुभमन गिल एहतियात के तौर पर श्रीलंका 11 के खिलाफ ये प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में 3 दिन का यह वार्म अप मैच खेला जा रहा है, जो आज से शुरू हो गया है। मैच में श्रीलंका 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। श्रीलंका के खिलाफ भारत की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचों की एक सीरीज खेलने वाली है। इस सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से शुरू होगा। और भारत में आज नेशनल हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, हाथ से कपड़े बुनने का दिन। भल भाई, इसकी शुरुआत तो स्वतंत्रता संग्राम में हो गई थी, लेकिन अब यह हर साल मनाया जाता है। प्रधानमंत्री को आज हैंडलूम दिवस के अवसर पर सबकी तरफ से बधाई दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, जबकि आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की भी बात कही थी। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर हैंडलूम दिवस को लेकर के एक संदेश दिया था, सबको बधाई दी थी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

कोई हेल्प करो इनकी, क्या चाहते हैं ये? ये गुम होना चाहते हैं। हाँ, अच्छा खासा रास्ता मालूम है इनके पास, नेविगेशन सिस्टम भी है। कहते हैं कोई हमें गलत रास्ते पे डाल दो, हमें रास्ता भुला दो।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: ये है Like a Gold.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: वेरी गुड मॉर्निंग भाई. साउथ हॉल ट्रेवल का वो पैगाम आपके नाम हम फिर से दोहरा देते हैं. साउथ हॉल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410. At all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
1: Like a goat.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज
4: हम से सस्ता. मैं बाली ब्रह्मा कैटी ऑन द शो गोल्ड ऑफ ट्रैवल हब विद प्रोड्यूसर हम सुनी बातें राधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम travelhubworld.com.
5: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट travelhubworld.com परवाल एवरी वीकेंड 4-7 कौन सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
6: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर. आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए. 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर.
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
8: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं जिंदगी भर याद रह जाती हैं और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th of September एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956-278-228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
9: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
11: Be part of a historic grand opening.
10: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
11: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
10: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
11: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: Laika Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.

0: लग गया रोग, कहते हैं लोग ये मर जाएगी। ये सही कह रही है भाई, ये पहले भी कई बार मर चुकी है, बता दूं आपको।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates. By LemFi mobile app जो है वो एक पाउंड के बदले दे रहे हैं भारतीय करेंसी में 127.99 रुपीस, पाकिस्तानी 373.54 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 451.66, बांग्लादेशी टके 166.61 और अफगान अफगानी 88.05.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold Rate, note कीजिए, the gold is trading at the rate of, क्या बताएं साहब, ये तो ऊपर चलता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, 103.37 pounds per gram today.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
5: Two businesses.
6: Same town.
5: Same service.
6: One appears on page one of Google.
5: The other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
10: Dad, Dad, Dad!
11: What's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale, bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK is regulated by the FCA and PRA.
12: Are we there yet?
13: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
14: Relax, I've booked the Uber already.
13: But how? My roaming isn't even working yet.
14: I switched to Simzy before we left London.
13: Simzy? Since when are you the tech expert?
14: Since I decided I want a stress-free holiday.
15: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
16: T's and C's apply.
3: Kajal's Couture's biggest end of season sale begins Saturday the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway Southall and 47 Green Lane Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
16: साउथ हॉल, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
17: बीकानेर वाला परंपरा भी,
18: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लीजिए साहब, एक खास गीत की फरमाइश आई है, पर वो गीत सुनवाने से पहले हमारे किशोर पांड्या भाई कहते हैं प्लीज वेलकम अवर बिग ब्रदर बॉब ब्रह्मभट्ट इन लंदन, शोबिज पार्टी इन वीडियो रामा। तो भाई मैं आऊं क्या? मैं भी आऊं और फैमिली को भी ले आऊं। भाई का स्वागत करते हैं। भाई बिग ब्रदर तो बाली ब्रह्मभट्ट है और उनके बड़े भाई बिगर ब्रह्मभट्ट। ओके रवा भाई, वेलकम टू लंदन। भाई को हम भी जो है स्वागतम कहते हैं। और एक और संदेश भाई के लिए, ये है दामिनी की ओर से, कहती है गुड्डू भैया आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं भारत में और हम उन तक बधाई संदेश पहुँचा रहे हैं इस गीत के माध्यम से। और ये भी गीत आपको याद दिलाएगा कि रक्षा बंधन का त्यौहार आ रहा है, बहनें तैयार रहें भाइयों की कलाई को सजाने के लिए, राखी भिजवाने के लिए टाइम पर।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो है। इसके साथ ही आप लाइका रेडियो मिडलैंड भी सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम वहां भी प्रसारित हो रहे हैं ऑनलाइन, ऑन डीएबी और विभिन्न माध्यमों से दुनिया भर में पहुंच रहे हैं हमारे गीत, संगीत, बातचीत, सूचनाएं, समाचार। और इसीलिए भाई हमारे श्रोताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क कामयाबी की सीढ़ियों पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। बधाई आप सबको, मुबारकबाद। समय चिंतन का है, थॉट फॉर द डे आज का विचार, और आज का विचार जुड़ा है आज के त्योहार के साथ। भाई त्योहार कौन सा है आज? वाले एक राष्ट्रीय पर्व है भारत में, आज शुक्रवार 7 अगस्त। आज का दिन इतिहास और संस्कृति की नजर से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन भारत में एक स्वदेशी आंदोलन की हिस्टोरिकल शुरुआत हुई थी 1905 में। नोट कर लीजिए, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी चीजों के बहिष्कार और स्वदेशी चीजों को अपनाने का औपचारिक आह्वान, एक आंदोलन शुरू हुआ था। आज के चिंतन के लिए जिन लोगों ने आलेख भेजा है उनका धन्यवाद शुरू में भी कर दें, बाद में भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिसेज दिनेश कोहली लिखती हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, पर इतनी भी पुरानी नहीं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में इस स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाई है, क्योंकि आज एक वहां पर भारत में कई सालों से चलता आ रहा त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। भाई ये जो हथकरघा दिवस है, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बना था। हर साल 7 अगस्त को ये नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। वैसे इसका ऐलान 2015 में हुआ था, पर इसका संबंध स्वतंत्रता संग्राम से है। ये दिन भारत के बुनकरों, कारीगरों और सदियों पुरानी जो कपड़ा बनाने की ट्रेडिशन है उसको सम्मान देने का अवसर है। भारत की कल्चर में, संस्कृति में हथकरघा केवल कपड़ा नहीं है, हाथ से बना हुआ हैंडलूम ये हमारी पहचान है, परंपरा है और पीढ़ियों से चली आ रही कला का ताना बाना है। याद है कश्मीर की पश्मीना, गुजरात का पटोला, केरल की साड़ियां और बनारसी साड़ियां। भाई देश के अलग अलग हिस्सों की बुनाई उसकी वैरायटी को दर्शाती है। अब इसका सांस्कृतिक यानी कल्चरल मैसेज क्या है कि जिस हाथ ने धागा बुना है उसमें केवल हुनर नहीं है, पीढ़ियों की विरासत है। आज अगर हम हैंडलूम का कोई कपड़ा अपनाते हैं तो हम सिर्फ कपड़ा नहीं खरीदते, एक बुनकर की मेहनत, उसकी कला

आप वो मिट्टी का दिया जलाते हैं ना, तो आप किसी के घर का चूल्हा जलाते हैं, किसी के घर में रोशनी पहुंचाते हैं। आज 7 अगस्त है, ये भारत के इतिहास और संस्कृति दोनों को जोड़ता है। 1905 में इस दिन स्वदेशी आंदोलन ने एक नई शक्ति पाई थी। राष्ट्रीय हथकरघा या बुनकर दिवस कह सकते हैं, उनकी कला को समर्पित है आज का दिन। मिसेस कोहली कहती है कि आज हम संकल्प लें कि अपनी मिट्टी में बने उत्पादों, अपने कारीगरों और अपनी विरासत का सम्मान करेंगे, क्योंकि अपनी चीज सिर्फ चीज नहीं है, स्वाभिमान की भावना है। जब मैं अपने यहाँ के जूते या अपने देश का कोई कपड़ा पहनता हूँ, मैं अपने आप को अपनी मिट्टी के बहुत करीब, अपनी धरती के बहुत करीब, अपनी संस्कृति के और अपने देश के बहुत करीब महसूस करता हूँ। कहते हैं कुछ आवाजें केवल सुनाई देती हैं और कुछ आवाजें दिल में उतर जाती हैं। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बुजुर्ग बुनकर रहता था, जो कपड़ा बुनता था। उसकी छोटी सी झोंपड़ी में एक पुराना करघा रखा था। सुबह होते ही वो करघे की खट खट शुरू कर देता, कपड़ा बुनता था ना। एक दिन उसके ग्रैंडसन ने पूछा, दादा आप रोज इतने घंटे इस करघे पर बैठते हैं, क्या मिलता है आपको इस खट खट से, जबकि आजकल तो मशीनों से कपड़ा बुना जाता है, महीनों का काम मिनटों में होता है। तो बूढ़े ने कहा, बेटा मैं सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता, मैं तो अपनी मिट्टी की कहानी सुनता हूं, मैं तो अपनी जिंदगी बुनता हूं। फिर उस बुजुर्ग ने, रामदास ने, हाथ में एक रंगीन धागा उठाया और कहा, देखो देखो ये धागा है, बहुत कमजोर है, लेकिन जब ऐसे हजारों धागे एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मजबूत कपड़ा बनता है। ऐसा ही है हमारा देश, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावे, अलग अलग परंपराएं, लेकिन सब मिलकर के एक मुल्क बनाते हैं। याद रखना बेटा, जब तुम अपने देश के कारीगर के हाथ से बनी कोई चीज खरीदोगे ना, तो तुम अपने लिए सम्मान खरीदोगे, तुम उनके घर का चूल्हा जलाओगे, उनके बच्चों के पढ़ाई में मदद करोगे और उस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाओगे। पोता चुपचाप करघे को देखने लगा, वो कपड़ा बुनने का वो पुराना यंत्र और उस करघे की वो खट खट की आवाज अब उसको परेशान नहीं करती थी, बल्कि अब उसमें उसको संगीत सुनाई पड़ता था। ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, भाई धागे से हाथ में बांध करके हम एक रिश्ता बांधते हैं। राखी का त्योहार आ रहा है, समय पर राखी भिजवा दीजिएगा, बहनें भाइयों की कलाई पर सजा करके एक संकल्प दोहराती है। बहनों भाइयों, ये धागे बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, इन्हें सुनिए, महसूस कीजिए। हैप्पी नेशनल हैंडलूम डे। ये प्यार के धागे कभी तोड़िएगा नहीं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, धागे बुनो, रिश्तों में बंधे रहो।

0: भारत में राष्ट्रीय कर्का दिवस के अवसर पर आज आप एक विचार सुन रहे थे चिंतन में। धागे कैसे जोड़ते हैं दिलों से दिलों को, धागे से धागे जोड़ करके हमारी इज्जत के रक्षक बनते हैं। लोक लज्जा निवारणार्थम वाससिम प्रतिगृह्यता, एक धागा चढ़ाकर हम भगवान को वस्त्र अर्पण कर देते हैं। ये धागे सिंबॉलिक रिश्ते हैं और कैसे एक एक धागा जुड़ करके वस्त्र का निर्माण करता है। वन भाइयों, आज के चिंतन के लिए आलेख हमें भेजा था हाउंसलो से श्रीमती दिनेश कोहली ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गीत आपने सुना दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म घुंगरू, मनोहर उदास और साधना सरगम की आवाजें थी। और भाई ये बना आज का चिंतन, थॉट फॉर द डे। राखी का त्यौहार याद दिलाने के लिए भी भाई इस चिंतन का हम इस्तेमाल करते हैं। धागे याद दिला रहे हैं कि राखी के धागे पोस्ट कर दीजिए ताकि समय पर भाई की कलाई पर सज जाएं। आकलन करके भाई, वैसे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि 27 को या 28 को, लेकिन यहाँ के विद्वानों का कहना कि 27 तारीख को यहाँ के हिसाब से कालगणना करने वाले हिसाब किताब लगा के कहते 27 अगस्त को राखी का त्यौहार मिलकर मनाएंगे। उसके बाद जन्माष्टमी आ रही है तो भाई तीज त्योहारों के साथ भी हम आपको जोड़े रखेंगे। और राष्ट्रीय त्योहारों की बात करें तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में यौम आजादी और 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस भारतवंशी मनाएंगे। लेकिन साहब 22 अगस्त को बड़ी धूमधाम से बहुत बड़े स्तर पर नवनेट सेंटर में इंडियन डायस्पोरा और भारतीय हाई कमीशन, जितने भी संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चरल सेंटर्स हैं, भारत की संस्कृति को प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे मंच पर। नवनेट सेंटर प्रिंटिंग हाउस लेन हेज में 22 अगस्त को दिन भर बड़ी रौनक रहेगी। राष्ट्रीय गीत गूंजेंगे, तिरंगा लहराया जाएगा, फ्री फूड होगा, स्टॉल्स लगे होंगे, मेला लगेगा, गीत संगीत नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो फ्री एंटरटेनमेंट, फ्री फूड, फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, क्योंकि सब कुछ आपका है। भारतवंशियों का त्यौहार है, पहुंचेगा। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं भाई एडवांस में, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की, यौम आजादी की पाकिस्तानियों को और भारतीय स्वतंत्रता दिवस की भारतवंशियों को। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। याद दिला दूं कि 11 बजे की खबरों के बाद हम चिंतन सुनवाते हैं हर रोज मंडे टू फ्राइडे। और हाँ, स्वागतम कहना चाहेंगे भाई, भारत से साधु संत आए हैं, धागे भाई जो जोड़ने का काम करते हैं ना, वो संत भी करते हैं जोड़ने का काम। कहते हैं विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न धर्मों को, मजहबों को, भाषाओं को, कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को जोड़ने के लिए हम विश्व अर्पण करते हैं। हम यूके में आए हैं और 14 तारीख को हमारे राजराजेश्वर गुरुजी बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं बायरन हॉल हैरो में। इसके अलावा आज बर्मिंगम में डडली में परम पूज्य संत त्रिलोचन दास जी के सानिध्य में भाई संत इकट्ठे हो रहे हैं। 25 से भी अधिक लोग हैं संत महात्मा भारत से आ रहे हैं, अपने विचार रखेंगे विश्व को जोड़ने में, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना में। वसुधैव यानी पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। बस यही विचार है जो हम सबको जोड़ेगा। चिंतन समाप्त होता है, लौटते हैं अब अपने मूल रंग के कार्यक्रम की ओर।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK giving 127.65 Indian rupees for £1. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Aap apno ko paise bhijwa sakte hain. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: और चकोरी चकोरी काली पलक।
1: एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी,
0: थोड़ी थोड़ी
1: क्या मिलेगा भाई? अरे बहुत सारा चोरी का सामान मिलेगा वहाँ। दो चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और इससे पहले जो गीत हमने प्रोग्राम में शामिल किया वो लिया गया था फिल्म उस्ताद से। और बहन भाइयों, संगीत की महफिल सजी है लाइका रेडियो नेटवर्क पर। लाइका गोल्ड के गीत आप तक पहुंच रहे हैं विभिन्न माध्यमों से।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a Extra Podcast Update.
3: दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत सुनवाने के बाद भाई मैं आपको लाइका एक्स्ट्रा के विषय में बता दूं। नया एपिसोड आ चुका है हमारे लाइका एक्स्ट्रा पर भाई, बहुत अच्छी जानकारी बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत की जाती है। इस बार जो एपिसोड आया है, दिस इज होस्टेड बाय खुश, और ये है इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए स्कैम। क्या कहेंगे आप भाई, अच्छी तरह से स्टडी करके, अध्ययन करके और खोज खोज के, ढूंढ ढूंढ के जो है उन्होंने रिसर्च करके इस पर जवाब ढूंढे हैं। आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में कई लोगों का ख्याल है कि भाई बातें सच होती हैं, और कई लोग मानते हैं कि सब ठगी है जी, लोग वो तुक्का लगाते हैं, कभी लग जाता है तो तीर, नहीं तो चल जाता है। लेकिन आपको कई लोगों का ये मानना है कि अगर आप अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म का समय, ये सब चीज़ें सही बताएं तो काफ़ी भविष्यवाणियाँ जो है सटीक बैठती हैं, बिकॉज इट्स अ मैथमेटिक्स। और भाई अगर वहाँ कुछ गड़बड़ है तो नेचुरली प्रिडिक्शन जो है सही नहीं होंगी। लेकिन और भी बहुत बड़ा विज्ञान इसके पीछे है, और वो क्या क्या है डिस्कस किया है खुश ने, हमारी खुश जो है बहुत खुश है इसे प्रस्तुत करके। इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए स्कैम, देखने के लिए यू कैन विजिट अवर लाइका एक्स्ट्रा। दिस इज पॉडकास्ट जो है दैट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और दूसरे जो मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ ये उपलब्ध है।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है लाइका गोल्ड,
3: travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: One performer,
9: countless personalities,
8: a whole universe of entertainment.
9: Sunil Grover live UK tour 2026.
8: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
9: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
8: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
9: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
8: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300।

0: की आवाज पहचानते हैं आप, नाम है परवीन सुल्ताना। गजलों के लिए, ठुमरी के लिए और भाई कितने तरह के वो शास्त्रीय संगीत के लिए जानी मानी आवाज है। कुछ गायिकाएं ऐसी हैं साहब, उन्होंने अलग अलग विधाओं में गाया है, फिल्मों में उनका उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो भी गाया है वो छाया है।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
0: करेंसी रेट्स बता रहा हूँ भाई आपको, लैम्फाई की ओर से जो रेट्स दिए जा रहे हैं नोट कीजिए, और अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो उनकी ऑफर्स का फायदा उठाइए। टुडे फॉर £1 इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 127.89 रुपीस, पाकिस्तानी 373.53 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 451.68, बांग्लादेशी टके 166.58 एंड अफगान अफगानी 88.02।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: LIKA Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: सोने का भाव क्या बताएं साहब, ये तो ऊपर जा रहा है। आज सोना 103.46 pounds का एक ग्राम मिल रहा है।
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Like a God.
5: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
6: I hope Major Naina, we'll be

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danu. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Dad.
4: What's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad. You can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं। श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
10: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof. Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
12: Reminisce those classics on Like a Gold.
13: लीजिए साहब, फरमाइश आई है। शौकत हुसैन भाई, शौकत भाई हमें याद दिलाते हैं कि रवि जी, आप सुरेश वाडकर जी को भूल तो नहीं गए हैं? अरे साहब, कौन भूल सकता है उस सुरीली आवाज को। सुरेश भाई आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे सुरेश वाडकर जी।
14: सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।
13: नाम है उसका पद्मा वाडकर, जो सपने में मिलती है।

0: 1955 में जन्मे थे सुरेश वाडकर।
1: सपने में मिलता है वो मुंडा मेरा, सपने में मिलता है।
0: 71 की हो गई हैं आज। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सुरेश भाई।

0: सुरेश ईश्वर वाडकर 7 अगस्त 1955 में जन्मे थे भाई, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। पद्मश्री सुरेश वाडकर भाई, उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है भारत सरकार से, और भी बहुत सारे अवार्ड उनके नाम हैं। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और हम उन तक बहुत सारी शुभकामनाएं उनके प्रशंसकों की ओर से भिजवा रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK, उनका आज का रेट नोट कीजिए। और भाई अपनों को भारत में पैसे भिजवाना चाहते हैं तो फायदा उठाइए उनकी सेवाओं का। आज 1 पाउंड के बदले वो दे रहे हैं 127 रुपये और 65 पैसे अधिकतम, यस 127.65 मैक्सिमम दे आर गिविंग फॉर 1 पाउंड। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's अप्लाई।
2: ये है Like a Gold. Like a Gold.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Sat

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
4: My Artist of the Week is सप्ताह है. आप उनकी फिल्मों के गीत सुनते रहे हैं. बिस्वजीत चटर्जी. भाई बिस्वजीत 90 वर्ष के हो जाएंगे इस जन्मदिन पर और वो रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार भाई वो फिल्मी कार्यक्रमों में नज़र आ जाते हैं कहीं किसी रूप में, कभी किसी रूप में. और काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं तो नेचुरली अब उतने एक्टिव तो नहीं हैं, लेकिन साहब बिस्वजीत की फिल्मों के गीत हमारे श्रोताओं ने एंजॉय किए. और मुझसे अगर पूछा जाए कि भाई मेरा फेवरेट गीत कौन सा है तो वो तो मैं आज नहीं बजाऊंगा, क्योंकि अपना अपनी पसंद का. आज मैं वो गीत बजाना चाहता हूं जिसे हमारी जो लिसनर हैं उन्होंने पसंद किया और कहती हैं कि बहुत प्यारा है, क्योंकि इसे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने नहीं बल्कि प्यारे लाल के भाई ने संवारा है संगीत से. फिल्म का नाम है शरारत. तो नैना शाह, आप हमेशा हमें गीत सुझाती हैं, बताती हैं और सुन नहीं पाती हैं, सुनवा नहीं पाती हैं. आज आपका सुझाया गीत, म्यूजिक डायरेक्शन गणेश जी.

0: विश्वजीत आर्टिस्ट ऑफ द वीक, भाई मेरे कार्यक्रम में तो एज आर्टिस्ट ऑफ द वीक ये आखिरी पेशकश थी, प्रेजेंटेशन थी विश्वजीत के लिए। हम उनकी लंबी उम्र की दुआ के साथ समेटते हैं उनकी इस फिल्मी गीत को जो हमें नैना शाह ने सुझाया था। नैना जी भेजती रहा करें, आप अपने सुझाव बहुत कारगर हैं, बिल्कुल हमारे वो मित्र हैं जो उनकी तरह से। तो अब भाई एक और गीत हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड गीत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और बहन भाइयों ये गीत जा रहा है उस नौजवान के नाम जो इस समय ट्रक चला रहे हैं और लाइक गोल्ड रेडियो के गीतों को एंजॉय भी कर रहे हैं। पर कहते हैं मैं जींद का सूं हरियाणा का, कोई सामन का गीत बगा देना है शर्मा जी, बगा दूंगा पर कैच कर लिए। सावन की ऋतु है और सावन के महीने में भाई झूला झूलती हुई हरियाणवी महिलाएं वो इस तरह का गीत गुनगुनाती हैं कि वक्त जैसे ठहर जाता है।

पवन घनौरी जींद वाले की फरमाइश पर। और पवन भाई जरा ट्रक है, सावधानी से चलाइएगा, स्टेयरिंग पर कंट्रोल रखिएगा।

0: ये लोग धुने भाई दबी छुपी जो है फिल्मी दुनिया में भी पहुंच जाती हैं, दूसरे लोग भी इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इन्हें भाई ढूंढ कर सजा कर सवार कर निखार कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आजकल निभा रहे हैं हरविंदर मलिक। और हरविंदर मलिक इस समय अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी के लिए पहुंचे हुए, वहाँ सुन रहे हैं, औरों को भी सुनवा रहे हैं। और भाई ये गीत हम आपके भी नाम लगा रहे हैं, क्या प्रोडक्शन है, क्या कंपोजिशन है, और लोक धुन को सवार कर जिस तरह से आपने निखार करके भाई प्रस्तुत किया है, थैंक यू वेरी मच हरविंदर मलिक।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Laika Gold.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: चुरा सकूं कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मैं बड़ी मुश्किल में हूं।
1: भाई मुश्किलटी में तो मैं फंसा हुआ हूँ, इतने सारे मैसेज आकर के चिपक गए हैं स्क्रीन पर, मैं सबको शामिल नहीं कर पा रहा हूँ। ये भला मुझे माफ करेंगे मेरे श्रोता, मेरे प्यारे प्यारे श्रोता, न्यारे न्यारे श्रोता कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। लिखते हैं हम सफर में हैं और आप हमारे सफर को हम सफर बनकर शानदार और जानदार सफर बना रहे हैं, क्या बात है। साउथ हॉल ट्रेवल वालों की भाई ये बात आपको फिर याद दिला दूं, कह रहे हैं कि वो जो एडवाइस थी ना FCDO की, अरे वो दुबई के बारे में भाई, वो कहते हैं अब आप दुबई की यात्रा कर सकते हैं खुल के बड़े आराम से, जितना जी बार चाहें दुबई आएं। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Visit travelhubworld.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।

0: To book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
2: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: बवाल इस बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
5: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
6: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
7: भाई, निकाल माइक।
8: बाय बाय के पिया।
2: The brand new reality TV show Bhojpuri Pawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
9: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
9: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भाई प्रार्थना का रूप कोई भी हो लेकिन उसका रिश्ता दिल से होता है, दिल से निकलती हुई दुआएं कबूल होती हैं और हमारे तमाम श्रोताओं के लिए, सामाइन के लिए भाई ये दुआएं प्रार्थनाएं हैं, ऊपर वाले को कबूल और आपके घरों में सुख शांति निवास करे, इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं।
1: Sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
3: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: And let me tell you the swiftly के रेट भाई इस समय एक पाउंड के बदले इन डिफरेंट करेंसीज दे आर गिविंग भारतीय मुद्रा में इंडियन करेंसी में 127.98 रुपीस फॉर वन पाउंड, पाकिस्तानी करेंसी में एक पाउंड के बदले 373.34 रुपीस दे रहे हैं, श्रीलंकन रुपए 450.98, बांग्लादेशी टके 166.44, अफगानी 88.07 और केनियन शिलिंग्स एग्जैक्टली 174 फॉर वन पाउंड।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LIKA Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is sold at the rate of 103.47 pounds per gram.
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: आज किसका जन्मदिन है?
5: ओ जियो जियो मेरे लाल तेरी टेढ़ी टेढ़ी चाल, तूने आज खेल खेल में कमाल कर दिया, ओ मार मार दुश्मनों का।
0: सुरेश वाडकर अपना जन्मदिन मना रहे हैं, वो तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन उनके अलावा भाई आज और भी किसी का जन्मदिन है। एक अपने पुराने भाई कॉमेडियन, वो उनका स्टाइल सुनकर के आप पहचान जाएंगे, वो ऐसे बोलते
6: मेरे को एक मैंने भी नहीं है। आप कौन कह रहे हैं साहब? कौन कह रहा है कि मेरी पी है? साहब पी थी वो तो उतर गई है।
7: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
6: रवि शर्मा नहीं, मेरे को कैस्ट्रो मुखर्जी बोल।
0: कैस्ट्रो मुखर्जी आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते भाई। 7 अगस्त 1905 में मुंबई में जन्मे थे कैस्ट्रो मुखर्जी, एक शराबी की भूमिका में जबरदस्त जो है वो रोल अदा करते थे। राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के ग्रैंडसन, वो भी भाई 1935 में अगस्त 7 को ही जन्मे थे राजमोहन गांधी। इसके अलावा और भी कई लोग भाई आज जन्मदिन मना रहे हैं। ओम प्रकाश जिंदल एक नाम है, हरियाणा के बहुत बड़े उद्योगपति और राजनीति में भी दखलंदाजी रही उनकी, उनकी पत्नी उनका बेटा वो भी राजनीति में है। हिसार में जन्मे थे इंडस्ट्रियलिस्ट ओम प्रकाश जिंदल, एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई और उनके साथ ही डेथ हो गई बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र की भी, सुरेंद्र टाली, ये भाई दोनों हेलीकॉप्टर में सवार थे जब इनकी मृत्यु हुई दुर्घटना में। तो आज ओपी जिंदल साहब का भी जन्मदिन पड़ता है, 1930 में जन्मे थे हिसार में हरियाणा में। और भाई अगर आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन हो तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
8: अरे नहीं पल भर देर लगाता हूँ, अरे मैनेजर को बुलवा

0: अरे रे रे रे रे रे, हमने धंधा क्या किया, किसी ने चंदा ना दिया।
1: अरे तेरी,
2: भाई जाऊंगा अब तो, जाने ना देंगे कैसे, नहीं जाने देंगे। वो बाली भाई आ रहे हैं, स्टूडियो खाली करा रहे हैं।
0: वो कंगाल कर दिया, बिन चंदे ये बंदे का हाल कर दिया।
3: This is Like a Gold. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुँचे।
5: Watford में dinner plans, थोड़ा classy, थोड़ा desi.
6: तो आइए Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
5: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala से biryani तक, fresh bread and refreshing drinks. हर bite में लाजवाब flavors और vibe बिल्कुल premium.
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
3: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे, कॉल ऑन 0208 507 7900 और डाउनलोड द कैटलॉग फ्रॉम heraldplastic.com. हेरल्ड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Hérold disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
3: Gargels Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Gargels Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Gargels Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
11: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
11: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
12: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
13: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
14: बीकानेर वाला परंपरा भी
15: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW31QT। कॉल करें 07487-687-885।
16: Have you noticed the way fans shout at football matches?
17: Oh, wake up!
16: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
18: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: That's it, बहनों भाइयों, ये था आज का मनोरंजन प्रोग्राम और अब रवि शर्मा आपसे इजाजत चाहेगा। चांद चेहरों पे घटा गम की छाई होती है, सिसकियां लब पे नजर डबडबाई होती है, कोई शय इस कदर बेदर्द नहीं हो सकती, मेरे ख्याल में यही जुदाई होती है। जुदाई की घड़ी आ गई। और लंबा वही अंतराल है, वीकेंड बीच में आ गया है, तो अब अगले दो दिनों के लिए रवि शर्मा को याद कीजिएगा और याद आइएगा, मुझे कहीं भूल मत जाइएगा।

Okay, we are into Friday, and this is 7th of August, Friday, Sizzling Friday. It's the 219th day of 2026. How are you? Better than me. मैं इधर एसी में बैठा हूँ और आप गार्डन में बैठे होंगे या किचन में कोई मज़े से कुकिंग कर रहा होगा और मेरे चटपटे गाने सुन रहे होंगे. सो आज क्या क्या होने वाला है? अच्छा ही होने वाला है ऑफ कोर्स, एंड आई डू वर्क हार्ड अपॉन प्लीजिंग यू ऑल. बट जे ओम प्रकाश की अगर मैं बात करूं तो जय ओम प्रकाश, जे ए वाई ओम प्रकाश. सो बट दुनिया उनको जे ओम प्रकाश के नाम से जानती है, या तो ओम जी सब बोलते थे. बॉर्न ऑन 24th ऑफ जनवरी 1926 इन सियालकोट, विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान, एंड 7th August 2019 पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 इन मुंबई. अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर, अ फिल्म मेकर, सब डबल ए और ए से ब्रांड नेम. सारे फिल्में जितनी थी या तो डबल ए और सिंगल ए, लेकिन ए से शुरुआत. एक्सेप्ट देयर वर टू फिल्म्स, भगवान दादा, ही वाज द डायरेक्टर. वो फिल्म का टाइटल था भगवान दादा, एंड ही वाज द डायरेक्टर इन दैट वन. एंड राजा,

0: एज अ प्रोड्यूसर राजा जानी. राजा जानी जो फिल्म थी उसमें वो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर नहीं थे. सो फिल्म्स एज अ डायरेक्टर, आपकी कसम, आक्रमण, अपनापन, आंधी, आशिक हूँ बहारों का, आशा, आसपास, अपना बना लो, देन आसरा प्यार दा, वो पंजाबी फिल्म थी बाय द वे, अर्पण, एंड देन आखिर क्यों, एंड देन आपके साथ. फिर आई भगवान दादा 1986 में, जहाँ पे ही चेंज फ्रॉम ए टू बी. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एज अ डायरेक्टर, एंड देन अग्नि वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई हिम. मैनी फिल्म्स वर प्रोड्यूस्ड बाई हिम टू, यू नो, आदमी और अप्सरा, फिर अजीब दास्तां हैं ये, आदमी खिलौना है वो डायरेक्ट की थी इन्होंने. सो देखा जाए तो इनकी करियर के बारे में, हिज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नेम्ड एज फिल्म युग. फिल्म युग, आप जब भी कोई फिल्में देखेंगे ये सब, तो वहाँ पे फिल्म युग प्रेजेंट्स, यू नो, मतलब एज ऑफ फिल्म्स, फिल्म युग. 1961 की फिल्म आस का पंछी वॉज अ सिल्वर जुबली हिट, एंड द कंपनी प्रोड्यूस्ड फिल्म्स टिल मिड 90s. ही साइंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फॉर आए दिन बहार के, स्टारिंग धर्मेंद्र एंड आशा पारेख. वो पहली फिल्म थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो विद बिग स्टार्स. ऑफ कोर्स उनको फिल्म दोस्ती में अवार्ड्स मिले थे, लेकिन स्टार्स बड़े नहीं थे, दे वर ओके. सो वी हैव लक्ष्मीकांत प्यारेलाल विद बिग स्टार्स इन द फिल्म आए दिन बहार के. किसने चांस दिया? जे ओम प्रकाश ने. एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जे ओम प्रकाश का जो एसोसिएशन बना, दैट लास्टेड फॉर 22 years. 22 साल तक इन्होंने 26 फिल्में की, टिल अग्नि फिल्म 1988 में. एंड 12 फिल्में LP एंड लिरिसिस्ट आनंद बख्शी की थी. उसमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ऐसे जुड़े हुए थे, और 12 फिल्में उन्होंने जय ओम प्रकाश की साथ में की थी. एंड प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा एंड फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड फॉर 6 years, इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट. मतलब ये एक क्या होता है, आदमी जब रिटायर हो जाता है तो उसको मान पान मिलता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा बनाया, अ ट्रस्टी ऑफ आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड्स, पार्टिसिपेटेड इन एडवाइजरी पैनल्स, ऐसे ऐसे. सो इनके गाने हम सुन रहे हैं. इनकी डॉटर पिंकी मैरिड टू राकेश रोशन ऑफ कोर्स, एंड आगे बढ़ेंगे, उनके गाने सुनेंगे. ही वॉज एक्टिव फ्रॉम 1961 टू 2019 एट द फॉर 58 years ऑफ हिज लाइफ. सो चलो आगे बढ़ते हैं, उनके गाने सुनेंगे और मजा करेंगे. इन द सेकेंड आवर द स्टार्ट इज वेरी सैड. एक 10 साल का बच्चा देख रहा है कि कुछ लोग उसके डैडी को और अंकल को का कत्ल कर रहे हैं, 10 साल का बच्चा, और वो दुख झेलता हुआ बड़ा हुआ, और इसने कैसे गाने लिखे और कैसा बड़ा एक राइटर बन गया. सेकेंड आवर गुलशन बावरा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you, let's say, 127.65. 127.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online, or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: South Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel, at all protected. Start to

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
4: डैड,
5: व्हाट्स रॉन्ग बेटा?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
3: Shravan ke pavitra mahine mein kare Bhagwan Shiv ki aradhana. Param Pooja Sant Shri Chinmayan बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027 1934।

0: ईमानदारी से बजाओ. यू हर्ड दैट देयर इज अ स्टोरी ना व्हिच यू ऑलरेडी नो.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अभी उसकी स्टोरी तो आपको मालूम ही होगी नेचुरली, क्योंकि इट वाज सो एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टोरी बाय ईच एंड एवरी प्रेजेंटर. जब ये गाने का बजट आया तो आर डी बर्मन वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर, और आर डी बर्मन ने उनको ब्रेक डाउन दिया कि हम इतना कोरस रखेंगे और सिंगर का इतना होगा, स्टूडियो का इतना होगा, एंड दे गेव अ लिटिल बजट एंड 25,000 रुपया उन्होंने बजट दिया हुआ था फॉर द कोरस सिंगर्स. अभी गाना आउटडोर में टूवर्ड्स जम्मू कश्मीर, एंड द सॉन्ग वॉज इन बींग शॉट इन अ वेरी बिग वे. इन्होंने इतना बड़ा काम करना था इसके लिए. सो नेचुरली आर डी बर्मन थॉट के नहीं यार, ये गाने में थोड़ा सा कोरस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जान डालनी पड़ेगी, मेरी इज्जत का सवाल है. तो इन्होंने वो ही किया, इन्होंने कोरस बढ़ा दिया और 50,000 हो गया कोरस का. अब जब कोरस का 50,000 हो गया, सो जे ओम प्रकाश जी भड़क गए. उस स्टूडियो में आकर उनको आर डी बर्मन को सुना दी उन्होंने कि ये क्या है, इतना ओवर बजट आप काम कर रहे हो, दिस एंड दैट, वो बोल के चले गए. तो किशोर दा आए स्टूडियो में और बोलते क्या क्या क्या क्या क्या क्या हो रहा था इधर. उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ हुई, किसी ने जाके बोला कि ऐसा पंचम दा को इन्होंने जे ओम प्रकाश जी ने बोल दिया कि ओवर बजटेड हो गया है सब कुछ. सो किशोर दा, यू नो द मिस्चीवियस किशोर दा, इन्होंने बदला लिया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सॉन्ग ही जस्ट बोल दिया कि बजाओ बजाओ ईमानदारी से बजाओ, यू नो 50,000 खर्चा करा दिया. So that is the story of that particular song. आगे जाते हुए बड़ी कहानियां होगी, आज सुनते जाइएगा.
1: This is Laika.
0: Okay, now I'm gonna tell you something more, and that is about physiotherapist, occupational therapist, or paramedic. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जगह फिजियोथेरेपिस्ट हो, पैरामेडिक हो, रेडी फॉर अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, तो कैपिटा हैज़ हाइब्रिड क्लिनिकल एसेसर रोल्स अक्रॉस द मिडलैंड्स. यस, एक्सपेक्ट गुड ऑफिस आवर्स, नो नाइट्स, every weekend off, a 39,500 starting salary and comprehensive training, remote opportunities available. Search Capita Health Assessment Jobs. Capita Health Assessment Jobs. So if you're a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic, ready for better work life, this is your opportunity.
3: Like a gold.
1: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert.
5: Bali Brambert.
4: Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price
6: at all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
5: Om.
7: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
8: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.

0: जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर.
1: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX, or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7. Everything your business needs, all under one roof.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
4: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
5: साउथ हॉल, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
6: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी.
7: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 0779518100.
8: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good hits in the sun with Like a Gold.

and we are listening to songs that have been written by Gulshan Bawra. आगे जाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि उनका नाम गुलशन कुमार मेहता से गुलशन बावरा कैसे हो गया. सो गुलशन द मैड बावरा.

0: the lyricist who was so versatile. Honestly, he wrote lesser lyrics than his own counterparts. लेकिन उन्होंने जो भी लिखा वो क्वालिटी लिखा और वर्सेटिलिटी देखो. उन्होंने गाना लिखा यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी. प्राण साहब को कहा था कि फिल्म जंजीर में एक डांस वाला गाना होगा एंड ही वो शेर खान एंड ही सेड के उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर आप एक शेर खान का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर गिर जाएगा अगर उसको डांसिंग वांसिंग दिखाया उसका. लेकिन गुलशन बावरा ने एक ऐसी युक्ति मारी ऐसी ट्रिक मारी. उन्होंने जाके दोस्ती वाला गाना यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी ऐसा गाना उन्होंने लिखकर पेश किया प्राण साहब को. वो मान गए. उन्होंने कहा कि नहीं वो कैरेक्टर जो है शेर खान का वो बरकरार रहेगा तो मुझे ऐसा डांस सिखाओ जो मैं जिससे मैं लिरिक्स भी निभा सकूं और उसका कैरेक्टर भी. और वो ही हुआ. गाना सुपर डुपर हिट था बिकॉज ऑफ प्राण साहब्स प्रेजेंटेशन द लिरिक्स द म्यूजिक एंड मन्ना दा हु सैंग इट सो ब्यूटिफुली. कल्याण जी आनंद जी ने सजाया था संगीत. सो ऑल इन ऑल द सॉन्ग वॉज अ हिट बिकॉज इट हैड अ स्टोरी बिहाइंड इट एज वेल अबाउट प्राण साहब रिफ्यूजिंग टू डू इट एंड देन एग्रीड लेटर ऑन. अब गुलशन कुमार मेहता की अगर बात करूं उनके पिताजी वॉज अ वेरी वेल टू डू मैन. कंस्ट्रक्शन में थे वो एंड दूसरे कजिन ब्रदर्स भी थे. अभी हुआ क्या कि पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के दौरान रायट्स हुए और रायट्स के अंदर 10 साल का गुलशन देख रहा है उसके फादर को और उसके अंकल को. लोगों ने उनको उनका कत्ल किया. अब वो लोग भागे वहां से बड़े भैया के साथ. बड़ी बहन जयपुर में थी जिन्होंने उनको बड़ा किया गुलशन को और उनके बड़े भाई को. एंड देन हीज एल्डर ब्रदर ऑल्सो वॉज विथ हिम एंड हिज ब्रदर गॉट अ जॉब and they shifted to Delhi and then Gulshan graduated from Delhi University and he began to write poetry. Abar Bombay jaake unko ek naukri mili to unhone naukri le li is bahane se ke mujhe Bombay jaake writer banna hai aur wahan se story shuru hoti hai aur ek film unko mili thi jiske andar unko do gaane mile the likhne ko. और फिल्म का टाइटल था सट्टा बाजार. 1959 की फिल्म थी सट्टा बाजार. उसमें शैलेंद्र द ग्रेट राइटर हसरत जयपुरी इंदिवर ये सब शामिल थे वहाँ मीटिंग में. और जब मीटिंग में एक नौजवान ने एंट्री मारी यंग मैन ऐसी कलरफुल मल्टी कलर्ड शर्ट पहनी हुई और बाल एकदम मैसी अनरूली हेयर नहीं बोलते जैसे बिखरे हुए बाल एंड ही वॉज लुकिंग लाइक वेरी जेनी कैरेक्टर. ऐसा वो मीटिंग में एंट्री उन्होंने मारा तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे शांति भाई पटेल ने देखा हु इज दिस वियर्डो हु इज कम हेयर. लेकिन उन्होंने जब गाने सुनाए जो उन्होंने लिखे थे वो सुनकर उन्होंने कहा ये बंदे में दम है. जैसा भी कपड़े पहनता है कुछ भी करता है लेकिन इसका नाम हम चेंज करते हैं फ्रॉम गुलशन कुमार मेहता टू गुलशन बावरा मतलब मैड गुलशन. एंड मैड गुलशन सेड ओके. एंड पर्दे पे जब दूसरे राइटरों के साथ इनका भी नाम आया शैलेंद्र हसरत जयपुरी इंदिवर इन द फिल्म सट्टा बाजार 1959 की और टाइटल में आया गुलशन बावरा वहाँ से एक नया नाम पैदा हुआ. एंड गुलशन बावरा देन स्टार्टेड राइटिंग लिरिक्स और स्टोरीज ऐसी अच्छी अच्छी हैं. नेक्स्ट गाना जो है वही सट्टा बाजार का जो हेमंत दाने और लता मंगेशकर ने बड़ी बाखूबी से गाया था। ऐसी कहानियां सुनाते सुनाते मैं गाने भी सुनाऊंगा। वी आर रिमेम्बरिंग गुलशन बावरा ऑन हिज 17th डेथ एनिवर्सरी, बॉर्न इन शेखुपुरा एंड पास्ड अवे ऑन 7th अगस्त 2009 इन मुंबई।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: With £1 British sterling, you can get up to 127.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
9: Shaam chalne lage.
8: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
5: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
4: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
7: Across London, this is Bally Brambat on Laika Gold.

0: कैसी कैसी फिल्में, खलीफा, खेल खेल में, कसमे वादे, आरडी एंड गुलशन बावरा, रंग बदल दिया इन्होंने इंडस्ट्री का।
1: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क।
0: जी हाँ, इन्होंने ऐसा म्यूजिक डाला, यूथ सेंट्रिक रिदमिक वेस्टर्न फ्यूजन साउंडट्रैक्स, जो एक टीनेजर की जो जबान होती है वो यूज की, एंड द डिलिबरेटली थ्रू आउट ट्रेडिशनल हैवी उर्दू पोएटिक कंस्ट्रेंट्स इन केम यंगिस्तान, और इन्होंने खेल खेल में, कसमे वादे, सनम तेरी कसम, पुकार जैसी फिल्मों में ऐसा म्यूजिक दिया, कमाल कर दिया। गुलशन बावरा।

आज इतनी सारी ट्रिब्यूट्स है, लेकिन मैंने गिन चुन के कुछ 3 ट्रिब्यूट्स चुनी। अब सुरेश ईश्वरा वाडकर, इनके पिताजी वॉज अ क्लॉथ मिल वर्कर। आई एम हंग्री सो आई एम थिंकिंग ऑफ अ मील। क्लॉथ मिल वर्कर एंड ही वॉज ऑल्सो अ रेस्लर, यू नो, फ्री टाइम में रेस्लिंग किया करते थे। एंड उनके साथ छोटा सा सुरेश यूज टू गो विद हिम अखाड़े में, और फिर बाद में जवानी में ही स्टार्टेड गोइंग टू तलवाल कर जिम। सो फिटनेस फैनेटिक सुरेश वाडकर, हमारे ग्रेट सिंगर।

0: the Bollywood. A fitness fanatic who used to also go wrestling became a great singer. 7th of August 1955 born, and he got Padma Shri, the fourth highest award by the Indian government in 2021. Inki wife hai Padma, and they've got two wonderful daughters, Ananya and Jia, jinko main mil chuka hoon kitni baar. And he's been active since 1976 for 50 years, and we wish him a long, happy, healthy life. Maine aaj subah message unko bhej diya tha, and I suppose I'll receive a reply later on. Ab dekha jaye to he was born in Kolhapur, which is in Maharashtra. And baad mein jab inko thoda sa encouragement mila तो उन्होंने म्यूज़िक शुरू कर दिया और म्यूज़िक से टीचर बन गए. आर्य विद्या मंदिर में एक टीचर बन गए थे संगीत सिखाने के लिए. आज भी इनकी बहुत बड़ी एकेडमी चल रही है, सुरेश वाडकर जी की. एंड ही वन सुर सिंगार कंपटीशन इन 1976. एंड सोचो कि 1976 में सुर सिंगार कंपटीशन जीता तो सही, लेकिन जजेस कौन थे? जजेस थे म्यूज़िक डायरेक्टर जयदेव, म्यूज़िक डायरेक्टर रविंद्र जैन, जैसे बड़े बड़े नाम जजेस थे. उन्होंने इनको जिता दिया, मतलब कि ही डिजर्व्ड इट. ही सैंग हिज हार्ट आउट एंड क्लासिकली ट्रेन्ड एंड एवरीथिंग. सो रविंद्र जैन ने इमीजिएटली उनको एक गाना दे दिया फिल्म पहेली में 1977 में, और 1978 में जयदेव जी ने उनको फिल्म गमन में एक गाना दिया. अब लता जी बहुत प्रभावित हुई इनकी आवाज़ से. सो लता जी ने उनको इंट्रोड्यूस किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, खयाम जी के साथ, कल्याण जी आनंद जी के साथ. एंड देन He became also the voice of Rishi Kapoor in Henna, Prem Granth. Raj Kapoor ji ko bahut pasand the wo. Bol Radha Bol, Vijay and others. And Rajiv Kapoor ke liye Ram Teri Ganga Maili. Ji haan. Now, inko nominations bahut sari mili. Filmfare Awards mein jab bhi inka gaana koi aata tha, to nominate hua karta tha, lekin inhone jeeta kabhi nahi. Koi bhi Filmfare अवार्ड इनको मिला नहीं, लेकिन द हाइएस्ट नॉमिनेशंस ऑन रिकॉर्ड विद पैरेलल टू किशोर कुमार, दैट इज 6 नॉमिनेशंस. मैं हूं प्रेम रोगी, वो गाना जो था 1983 का, उसमें नॉमिनेशन मिला. मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, जो अभी आपने सुना, दैट वॉज डिजर्विंग एन अवार्ड, बट ही गॉट नॉमिनेशन. 1986 में राम तेरी गंगा मैली, 1990 में ये गाना लगी आज सावन. क्या गाना है, अगर मौका मिला तो आज सुना दूंगा मैं. लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है. 1991 में ओ प्रिया प्रिया, 1997 में चप्पा चप्पा चरखा चले, ही शेयर्ड इट विद हरिहरन. ऐसे ऐसे गाने, मतलब धुआंधार गाने. And I'm getting so many messages appreciating. Falguni and Mukesh from Lisbon are so happy that I'm celebrating Suresh Vadkar's birthday.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128. I repeat, 128 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold 15th and 16th of August at 9 PM.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to Visit heraldplastic.com.
8: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Dreaming of paradise?
12: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
11: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays. All at exclusive prices.
12: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
11: At all protected.
7: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203-393-5225. ITEC Wholesale, open 24/7. Everything your business needs, all under one roof.
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
16: sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of August and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208951011.
17: Like a Gold, London का number one Asian retro music station. अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: होप यू एंजॉयड दैट ट्रिब्यूट ऑफ सुरेश वाडकर जी, फिल्म दिल.
1: इट्स समर ऑन द लाइक रेडियो नेटवर्क.
0: ये आखिरी गीत है. 2014 में, दैट इज 12 साल पहले, ये गीत सुनाई दिया था दिल से रेडियो में. और आज मैं सुना रहा हूँ. फिल्म है पूनम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी और कोरस. बड़ा प्यारा गीत है, दिल दे दे दिल ले ले. सिंपल फॉर्मूला है. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राजा मेहदी अली खान की लिरिक्स. एंड वी गॉट यस सैंडी शाह हु इज नाउ गोइंग टू टेक ओवर. उनका साथ निभाइएगा. हैव अ वंडरफुल वीकेंड. एंड वी गॉट एनिका. Annie is on Laika Radio Midlands in place of Raj Patanji, who will be back next week. Bye-bye. Have a wonderful time over the weekend. Bali Brahmbhatt ka namaskar.

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at Quality Food branches.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
4: Cutthroat Ke Khiladi.
3: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
5: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
6: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन। Gold Drive with Sandy Shah. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
7: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड। मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 PM।

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
4: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kefurniture.co.uk पर
7: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
8: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escort and tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100 Atoll Protected.
9: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
10: बीकानेर वाला परंपरा भी
11: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे टेस्टी स्नैक्स मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB कॉल 07795181001
12: दिस इज सैंडी शाह ऑन गोल्ड ड्राइव
13: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: Tonight's Euro Millions jackpot is £94 million.
1: That's enough to get your hands in the air. Wow, you really don't care.
0: Get in tonight's draw. Euro Millions from the National Lottery. It could be you. Estimated jackpot. Rules apply. 18 plus.
2: Yeah.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
4: This part of the show is brought to you by Durandar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold. 15th and 16th of August at 9 p.m.
6: Deirdre, look. It's the bottomleys this time, sliding across their car bonnet.
7: Leave them be, Philip. They just claim confident.
6: Claim confident?
7: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
6: Deirdre? Deirdre? Come back here.
8: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
9: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
10: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
9: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
10: Friends, family, ya special night out. Isse yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
11: September महीना माँ हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
12: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
13: ए तमे स्त्री ओमने ऐसे रहे पुरुषों नाम खोटा होगो वालो बंद करो।
11: Comedy King निमेशा अने Queen of Comedy मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे। Super Hit गुजराती नाटक आलो पटेल भाईनी जान माँ। हवे Risley, Potter's Bar, Ilford, South London अने Luton माँ। Tickets अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो। मंजू ने on 07931534270 नाटक नु नाम याद रखो।
14: Anu Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
15: Shaam chalne lage.
14: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
10: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
11: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
16: बीकानेर वाला
17: परंपरा भी
18: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
19: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
20: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
2: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सुन रहे हैं गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह।
1: एंड दैट्स द वंडर ऑफ लाइक अ गोल्ड, फ्रॉम बड़े मियां छोटे मियां टू जिस देश में गंगा बहती है, द वंडर्स ऑफ गोल्ड।
2: बेगानी

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई.
5: पवन जी, मैंने सुना है जी? आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है.
6: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
7: भाई. निकाल माइक.
8: भाई माई के पिया कितना सुंदर.
1: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी पवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी.
9: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: ये है लाइका गोल्ड.
2: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
3: And they're very pleased to announce that the SCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Why don't you give them a call on 0208 574 8410 for the best deals to Dubai. Air toll protected.
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
6: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: At all protected.
6: Visit travelhubworld.com.
7: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678
9: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती
10: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
9: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा
10: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel अवारापन 2
9: इस बार या तो ये अवारापन खत्म होगा या मैं
11: तो फिर
10: Witness powerful emotions, breathtaking action and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Vakronia Media on Instagram.
12: Dad!
13: What's wrong, beta?
12: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
13: I will run down to the money exchange now.
12: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
13: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
14: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
15: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
2: बीकानेर वाला
3: परंपरा भी
2: स्वाद भी.
4: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT. कॉल करे 07487-687-885.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs apply.
6: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

हुए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। फैंटास्टिक फ्राइडे के लिए क्या आप सब है तैयार? जी, अगर ऐसे होता कि खुला मैदान होता और फिर मैं पूछी क्या आप सब है तैयार, आप कहते हैं यस मैम है ना, जैसे होता है किसी मिलिट्री ट्रेनिंग के जो ग्राउंड थे वहाँ पे जब वो पूछते हैं क्या आप है तैयार, यस हाउस द जोश, यस बढ़िया। सो आई एम श्योर आज फैंटास्टिक फ्राइडे का जोश भरपूर होगा आप सब में, क्योंकि कार्यक्रम का आगाज हमने किया था अंजाम से चने के खेत, और उसके बाद में सनम तेरी कसम से जाने जा। पूरी जो प्लेलिस्ट लगी है ना उसमें वॉल्यूम एक तो अप रहने वाला है, दूसरा आप लोग थिरकने भी वाले हैं, डांस करने वाले हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, पैर कहाँ, पैर मत थिरकाइए, हाथ जरूर थोड़े से थिरका लीजिएगा, ओके, यू हैव टू ड्राइव सेफली। सो आज अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, हमारे सारे के सारे धुरंधर आ चुकी हैं। अभी धुरंधर का मतलब ये होता है, कई लोगों ने कहा कि भाई आप धुरंधर कहते हैं, धुरंधर यानी कि यार जो सक्सेसफुली हर चीज़ को फाइट करके ज़िंदगी में आगे जाते हैं, सो इफ़ दैट मेक्स सेंस, तो यार बड़ा अच्छा नाम है, यू नो एवरीबडी इज़ अ फाइटर इन लाइफ, एवरीबडी हैज़ वन, कितने सारे ऐसे वॉर्स होते हैं जो शायद सबको हमारी लड़ाइयाँ नहीं दिखती हैं, लेकिन हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाता है। तो अब इस शो में क्या हम आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई। तो आज फनी सा सवाल होगा होगा, उसके बाद में लाइफ थियरी होगी, जी हाँ होगी, और मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन चलते रहेगा विद आ फीचर्स। पहला इज यादों की बारात, दैट इज आ फर्स्ट आवर का फीचर। तो क्वेश्चन, ओके, अब जब भी मैं आप लोगों से कोई सवाल पूछती हूँ तो उसमें ऑब्वियसली मेरा कुछ अनुभव रहता है, उसी से रिलेटेड मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का भी क्या एक्सपीरियंस है उस चीज़ से रिलेटेड। ओके, हम सभी ने जिंदगी में जो क्यू होती है, जो लाइन होती है, चाहे एयरपोर्ट हो, बस अड्डा हो, ट्रेन हो या किसी पार्टी

0: जैसे ही पलटी दूसरे लोग थे, अरे नहीं नहीं अश्विनी खाना खा लो ना, अब यहाँ तक आई हूँ, कहाँ क्यों मैं खड़ी रहूँगी। एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं आप लोग खड़े थे, एंड लाइक ना ना खाना खा लो। यस दैट वर्क्ड फॉर मी। ऐसे बदमाशी आपने कौन सी क्यू में की थी मुझे बताइए, और क्यों क्यों की थी ये भी जरूर बताइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपए। Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: झुमका गिरा रे

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
3: Kajal's Couture's biggest end of season sale begins Saturday the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway Southall and 47 Green Lane Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
4: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
5: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो।
6: ए तमे स्त्री ओमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानो बंद करो।
4: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली, पॉटर्स बार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो।
3: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203-393-5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
7: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02087677627।
8: Like a Cool, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 32 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। 7th of August, फैंटास्टिक फ्राइडे मना रहे हैं आप और हम। एंड आज बिकॉज इट्स फ्राइडे तो कोई अलग सी लाइफ थियरी सुनाऊंगी, ना छोटी होगी लेकिन शायद काम की होगी। इस थियरी का नाम है द काइंडनेस थियरी। छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। तो होता यूँ है कि एक मैनेजर जो सुपरमार्केट में काम करता है, रोज सुबह आता है, तब वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी रहता है उसे हेलो कहता है, उसकी हालचाल पूछता है और जाते समय रोज़ उसे बाय करके और उसकी हालचाल पूछ के निकल जाता है। अब ये रोज़ का उनका प्रोग्राम रहता है कि भाई वो मैनेजर जाते आते उस सिक्योरिटी वाले से बात करेगा। अब एक दिन ऐसा होता है कि शाम हो गई, 6 o'clock हो गया, सारे लोग चले गए लेकिन मैनेजर अभी तक बाहर नहीं आया। एंड एवरी डे इट यूज़ टू हैपन कि शाम में मैनेजर इस चौकीदार को बाय कहता था। जब मैनेजर बाहर नहीं आया तो ये चौकीदार अंदर ढूंढते हुए गया कि कहाँ चला गया होगा वो मैनेजर। उसने वॉशरूम्स चेक किया, पूरे सारे आइल्स देख लिए और उसे लगा क्यों ना एक बार मैं फ्रीजिंग जो एरिया है वहाँ पर जाके देख लूँ। तो फ्रीज़र का दरवाज़ा केवल और केवल बाहर से खुलता था, अंदर से कितना नॉक करो कुछ भी करो आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। एंड गलती से किसी एम्प्लॉय ने फ्रीज़र का दरवाज़ा लगा दिया था जब वो घर निकल रहा था। एंड द मैनेजर वॉज देयर इनसाइड, वो कुछ इन्वेंट्री ले रहे थे। जैसे ही ये चौकीदार अंदर पहुंचा, वो मैनेजर जो है बेहोश होते होते रह गया ठंड की वजह से। इस चौकीदार ने उन्हें खींच के बाहर लाया, वहाँ पे एक कंबल भी था उस सुपर स्टोर में, उन्हें उठाया एंड देन ही टुक देम टू मेडिकल सर्विसेज, वहाँ पे बुलाई एंड थिंग्स वर इन कंट्रोल। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो मैनेजर हैं ये रोज़ जाते आते उस चौकीदार से बात किया करता था, उसके हालचाल पूछता था। एंड एवरीथिंग दीज इमोशंस कम अंडर काइंडनेस, कि आप किस इंसान से कैसे बिहेव करते हैं। एंड काइंडनेस, एम्पैथी, कंपैशन, ये बड़े बेसिक इमोशंस हैं जो हम सब में होते हैं। कुछ लोगों में ये बहुत ऑब्वियस होते हैं और कुछ में शायद छुपे रहते हैं, लेकिन अपने काम की जगह या अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लोग जो है इस काइंडनेस का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और आते जाते अपनी ज़िंदगी के लोगों को पूछते रहते हैं। देखिए, जब आप ज़िंदगी में अच्छे और ऊपर वाले मुकाम पे पहुंच रहे ना, तो आपकी इस जर्नी में जिन लोगों ने आपका साथ दिया है उनसे अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, इफ़ यू आर काइंड, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग विद देम, तो जब कभी ज़िंदगी में ऐसा दौर आए कि आपका डाउनफॉल है, क्योंकि देखिए जो भी जगह हो, किसी भी जगह पे जो भी हॉट सीट रहती है वो परमानेंट नहीं होती है। जैसे ज़िंदगी में अच्छे दिन होते हैं वैसे ज़िंदगी में बुरे दिन भी आते हैं। तो व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप, डू मेक गुड रिलेशनशिप्स विद पीपल, बी काइंड टू देम, क्योंकि ये काइंडनेस ही शायद आपको आगे जाके बचाएगी। जब आप उस ऊपर चढ़ी हुई जगह पे पहुंच जाते हैं और जब फिर से नीचे उतरते हैं ना, तो यही जो लोग हैं जिनके लिए कभी ज़िंदगी में आपने कुछ तो भला किया था, ये आपको पूछते हैं और आपका साथ देते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कितने लोग हैं मुझे मत बताइए। ज़िंदगी है आपकी एंड काइंडनेस भी आपकी। छोटी सी लेकिन बड़ी ही सुलझी हुई थियरी है। ध्यान से समझिएगा और बताइएगा ये थियरी कैसी लगी।
0: ये है लाइका गोल्ड, द इवनिंग शो विद अश्विनी।
3: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
0: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड।
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
2: com.
5: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर
7: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
8: पैक्ड फॉर द ट्रिप? गिफ्ट्स, पासपोर्ट?
9: चेक, जस्ट ड्रेडिंग दैट फोन बिल व्हेन आई गेट बैक फ्रॉम इंडिया। रोमिंग इज अ नाइटमेयर।
8: मेट, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। जस्ट गेट सिमजी।
9: सिमजी?
8: इट्स एन ईसिम ऐप। यू बाय अ डेटा प्लान फॉर इंडिया स्टार्टिंग एट जस्ट $5। नो स्वैपिंग plastic sims, no kiosks,
6: plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's simzy.com. T's and C's apply.

0: This is Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: £1 ke badle aapko milega 128.49 Indian rupee, 374.88 Pakistani rupee, 452.7 Sri Lankan rupee, 167.08 Bangladeshi taka, 88.41 Afghan Afghani, 173.08 Kenyan shilling, 1.34 US dollars, 63.53 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £103.40 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:47 आप सभी ने ट्यून इन किया है फैंटास्टिक फ्राइडे ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। तो हफ्ते का आखिरी दिन, पूछें आप सबसे वही, कैसा रहा आपका पूरा सप्ताह? अच्छा रहा होगा। अभी जो चीज़ें और जो अनुभव आपने लिए होंगे वो तो आपके काम में आएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ प्यारी चीज़ें, कुछ न्यूट्रल चीज़ें। मैंने आप सबसे सवाल पूछा कि भाई कभी ऐसा हुआ है कि आपने क्यों तोड़ी, तो आपने क्यों तोड़ी? बहुत से लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस सुना है, उसमें से आधे से ज़्यादा स्पेशली विद द मेल कैटेगरी यहाँ पे, उन्होंने थ्री इडियट्स में जो होता ना कि दूसरों की बारात में जाके मेहमान बन के खा पी के आए हैं, ऐसे कई किस्से सुनाए हैं। किसी ने कहा कि भाई मैं अपनी उम्र का तकाजा सामने वाले को देकर मैं ज़रा क्यू में आगे बढ़ जाती हूँ। अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी स्माइल, बस यही तो चाहते हैं कि आप स्माइल करते रहें। पहला घंटा जो है इस शो का, अब हम चल रहे हैं पहले घंटे के आखिरी गीत की तरफ। एक हसीना थी किशोर कुमार की आवाज़ में, कर्ज फिल्म से सुना रही हूँ ये गीत। अगर वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, डांस करना चाहते हैं कर लीजिए। ऋषि कपूर पे फिल्माया गया ये गीत एंड कर्ज के तो सारे ही गाने इतने हैपनिंग थे, मज़ा आ जाता है। अगले घंटे में इमोशन ऑफ द डे फैंटास्टिक फ्राइडे में कौन सा गीत लेके आई हूँ, पूरा ही फैंटास्टिक फ्राइडे वाला शो चल रहा है ना। तो आज आपने फ्राइडे से रिलेटेड कुछ स्पेशल किया है, वीकेंड पे कुछ स्पेशल कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। ये आपका अपना शो है तो आपके और हमारे इंटरेक्शन से ये शो बढ़ती जाता है आगे। एक हसीना थी।
0: This is Ashwini on Leica Gold.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colors TV.
4: I hope Major Naina, we will

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। 8:13 फैंटास्टिक फ्राइडे मना रहे हैं आप और हम साथ में ऑन लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। बिल्कुल फ्राइडे वाले मूड में आप सभी हैं, सभी आप लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, किसी की पार्टी चल रही है, कोई कहाँ से घूम के आ रहा है और मुझे कहा कि भाई जरा थोड़ा प्रोग्राम स्लो करिए, हमारे गाने मिस ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आज जितने भी गाने आप सभी बहुत एंजॉय करने वाले हैं। एंड जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, वीकेंड की ऑलरेडी प्लानिंग सबकी होती रहती है, मेजर होता है घर का साफ सफाई आंदोलन। सो इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने वाली हूँ अभी नहीं, लेकिन उसके पहले एक समथिंग आई ऑब्जर्व्ड व्हाइल आई वाज टेकिंग माय डॉग टू पार्क। तो मैं जिस पार्क के पास में अपनी गाड़ी वहाँ पर लगाती हूँ, पार्क करती हूँ, वहाँ पर बहुत सारे घर हैं और किसी ने अपने घर के बाहर ना एक बुक्स की लाइब्रेरी जैसे बना के रखी है। वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि यहाँ से आप बुक्स ले जा सकते हैं, पढ़ने के बाद वापस यहाँ पे ला के रखिए। तो वहाँ पे बहुत अच्छा बुक्स का कलेक्शन उन्होंने लगा रखा है। एंड कितनी बार मैंने देखा कि बच्चे पार्क में जाते जाते वहाँ से कोई बुक पिकअप करते हैं, पार्क में जाते हैं, खेल कूद के जब थक जाते हैं पढ़ते हैं, वापस आते आते ये जो भी एक लाइब्रेरी है जिन्होंने अपने घर के बाहर अपने आंगन में ये लाइब्रेरी जैसा एक कबर्ड बना के रखा है, एंड दैट इज उसका शेप इतना क्यूट, एक हाउस रहता है ना घर के शेप का, वो उन्होंने कैबिनेट बनाया। दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड दैट्स सो थॉटफुल। कि आपने ऐसे कुछ ऑब्जर्व किया आपके आसपास में कि समथिंग विच वॉज वेरी थॉटफुल, जहाँ पे लोगों के काम के लिए आए चीज़ें, एनिमल्स के लिए आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बिकॉज इट्स समर्स तो अपने अपने घर के बाहर कई लोगों ने पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करके रखी होगी, थोड़ा फूड डाल के रखा होगा, बट दिस वॉज समथिंग अनयूजुअल और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आपने ऐसे कुछ देखा है मुझे ज़रूर बताइए।
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app. No SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128 इंडियन रुपीस। Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ी, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:29 इट्स 8:29। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। कश्मीर की गली से सुनाया तारीफ करो क्या उसकी, मोहम्मद रफी की आवाज़ में एंड स्पेशली वो जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सॉन्ग जो मस्ती भरे अंदाज में मोहम्मद रफी कहते हैं तारीफ, दैट्स फैंटास्टिक, मतलब उसके आगे कोई शब्द नहीं है। सो वीकेंड घर के ताने बाने और घर से रिलेटेड बहुत सारी साफ सफाई हम लोग करते रहते हैं। बेसिक हाइजीन तो रहता ही है, लेकिन ऐसा होता है ना कि डीप क्लीनिंग जो बोलते हैं कि आज ज़रा डिटेल में घर की क्लीनिंग होगी, तो बहुत से लोग चीज़ों को लाइनअप करके रखते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि केवल आपकी टॉयलेट सीट ही ऐसी एक जगह नहीं है जहाँ पे बहुत बैक्टीरिया, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये बैक्टीरियाज रहते हैं। आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग ट्रॉली, ना जाने कितने लोग शॉपिंग ट्रॉली को पकड़ते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल वो भी उतनी ही गंदगी होती है उस पे भी, तो उसे भी सैनिटाइज करना चाहिए। टूथब्रश होल्डर जो होता है हर किसी के घर में, उसमें भी बहुत बैक्टीरियाज होते हैं। किचन का जो स्पॉन्ज है, मुबारक हो, वहाँ पे भी होते हैं बैक्टीरियाज। टीवी रिमोट, हर कोई घर में टीवी रिमोट को हैंडल करते रहता है, सो ऑब्वियसली ये होना ही है कि आपको टीवी रिमोट को भी क्लीन करते रहना चाहिए। कंप्यूटर कीबोर्ड, इस पे तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, स्पेशली व्हेन ऑफिस वाली जगह होती है तो वहाँ पे ना जाने वो कीबोर्ड कितने सारे लोग यूज़ करते हैं। पेट का फूड बोल होता है वो भी, रीयूजेबल वाटर बॉटल जो होती है बिल्कुल उसे भी उतनी ही क्लीन करना ज़रूरी होता है। साथ में आपका मोबाइल फ़ोन, किचन सिंक, ऐसी जो चीज़ें हैं ये तो हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे जो मेन्यू कार्ड होता है, अगर मेन्यू कार्ड में से आपने मेन्यू सिलेक्ट कर लिया उसके बाद अगर आपने अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं किया या हैंड वॉश नहीं किया, तो ऊपर वाला आपकी रक्षा करे। ओके, बेसिक चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को बताते रहते हैं, क्योंकि आप और हम हैं म्यूजिकल फैमिली, तो ध्यान रखिएगा अगली बार मेन्यू कार्ड देखने के बाद में हैंड जरूर सैनिटाइज करिए या जाके हैंड वॉश कर लीजिए। इमोशन ऑफ द डे, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग फैंटास्टिक फ्राइडे, इमोशन ऑफ द डे। तो अगर आपको आपके यार की खबर मिल जाएगी तो कितना मजा आएगा ना। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में राम बलराम से ये गीत।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM,
0: द लाइका रेडियो नेटवर्क, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव। इमोशन ऑफ द डे।

0: इमोशन ऑफ द डे। लाइका गोल्ड।
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Leica Extra Podcast Update.
3: एपिसोड नंबर 28 आ चुका है। इज एस्ट्रोलॉजी रियल और अ ट्रैप, होस्टेड बाय कुश। इफ हॉरोस्कोप मैचिंग इज एक्यूरेट, व्हाई डू कंपैटिबल मैरिजेस स्टिल एंड इन डिवोर्स। ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछे गए यहाँ पे। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड।
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.com. UK.
7: Dad,
8: what's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: Herald, new world of eco-friendly disposable for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
2: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन। On this week's Leica Extra podcast, we discuss astrology, truth or trap, hosted by Kush, who talks to an astrologer and palm reader.
12: Let's talk about the next generation of South Asians, because whether it's astrology, whether it's anything to do with gemstones, lucky color, lucky days, palmistry, matching charts, any of that, it's not going anywhere.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Joker Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.47 इंडियन रुपी, 374.99 पाकिस्तानी रुपी, 452.76 श्रीलंकन रुपी, 167.03 बंगलादेशी टाका, 88.51 अफगानी, 173.77 केनियन शिलिंग, 1.35 यूएस डॉलर्स, 63.52 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £103.64 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 50 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. सो अभी जो गीत हमने आपको सुनाया था, आई एम श्योर वो आप सभी ने बहुत पसंद किया है, क्योंकि जिस तरीके से आपके मैसेजेस आ जाते हैं ना, जैसे ही एक एक गाना हम प्ले करते हैं आपके तरफ से आते हैं मैसेजेस. मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फ़र्ज फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत. 60s वाले बच्चे तो बेहद खुश हुए होंगे, है ना. अब इस आवर का आखिरी गीत फिर से 60s वाले बच्चे खुश होने वाले हैं, क्योंकि एन इवनिंग इन पेरिस से सुनाने वाली हूँ आसमान से आया फरिश्ता. इसी गाने में शायद है ना, जाना प्यार है तुमसे जज्जा, है ना, इसी में है. कुछ कुछ गीतों में जो छोटी छोटी बिट्स होती है ना, वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है. एंड आई व्हेन आई लिसन यहाँ पे स्टूडियो में, तो ऑब्वियसली स्पीकर्स के साथ में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो भी इतने क्लियर सुनाई देते हैं, ध्यान भी उनकी तरफ रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली चार स्क्रीन्स जहाँ पे लगी हैं उनकी तरफ देख के हम इन्जॉय भी करते रहते हैं कौन से गीत हम प्लेलिस्ट में लगा चुके हैं. सो ये प्लेलिस्ट अपलोडेड है. फैंटास्टिक फ्राइडे आप और हम मना रहे हैं, और ये थोड़ा और मस्ती भरा गीत आने वाला है, तो वॉल्यूम अप रखिए. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.
0: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे. दिस इज लाइका गोल्ड. दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड.
2: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुंचे.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
2: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स your travel mantra.
5: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 9939635757. Greens by Danube. Prime location,
6: High Appreciation
7: in Dubai.
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
11: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
12: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: SBR brightening UK up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128 इंडियन रुपी. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. T's and C's apply.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:22, इट्स 22 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है फैंटास्टिक फ्राइडे विद मी, मेरा नाम है अश्विनी, आप सभी का साथ देने आ जाती हूँ मंडे से फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक। जिंदगी का एक और सप्ताह आपने और हमने मिल के पार किया, 7th of August, किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगा, किसी को जॉब लगा होगा, किसी ने जॉब छोड़ा होगा, किसी के लिए न्यूट्रल डे होगा, किसी के लिए दिन आया और दिन गया, लेकिन आज और भी बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती है, जैसे इंटरनेशनल बियर डे मनाया जाता है, नेशनल लाइट हाउस डे, नेशनल हैंडलूम डे एंड प्रोफेशनल स्पीकर्स डे, एज्ड केयर एम्प्लॉई डे, नेशनल रास्पबेरी एंड क्रीम डे, नेशनल सी सर्पेंट डे एंड नेशनल वाटर बलून डे। अभी वाटर बलून डे के हिसाब से बात करें तो भाई हमें तो होली के टाइम पे जो वाटर बलून बना के जो बच्चे एक दूसरे पे फेंका करते थे वही याद आते हैं। आई थिंक वाटर बलून एक ऐसी चीज़ है कि चाहे छोटी हो बड़े हो वो ज़रूर इसका उपयोग करते हैं। होली के टाइम स्पेशली हम लोगों ने देखा है कि ये तो होता है हमारे अपने देश में कि बलून्स ले लेके उसमें कलरफुल पानी भर के एंड देन लोग एक दूसरे पे वो बलून्स फेंकते हैं, मस्ती रहती है, लेकिन जब वो लगते हैं ना वो बलून सटक एकदम से जी हाँ, प्यारी प्यारी यादें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं एंड आप लोग भी अपनी अपनी यादें हमसे शेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट ट्रैक होगा बिस्वजीत की फिल्म से, क्योंकि वो है हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक, तो उन्हीं की फिल्म ये रात फिर न आएगी विच वॉज रिलीज्ड इन 1966, उस फिल्म से आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में हुजूरे वाला।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Dell, Dell's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
2: This is Ash Winnie on Leica Gold.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
4: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: विजिट travelhubworld.com
5: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
6: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
5: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
6: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
5: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757 Greens by Danube Prime Location
7: High Appreciation
8: In Dubai
3: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on Leica Gold.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: 1 pound ke badle aapko milega 128.4 Indian rupee, 374.73 Pakistani rupee, 452.45 Sri Lankan rupee, 166.98 Bangladeshi taka, 88.36 Afghan Afghani, 173.49 Kenyan shilling, 1.34 US dollars, 63.48 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £103.52 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 40 मिनट्स पास्ट 9। आप टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है, अश्विनी टाइम फॉर यू टू से टटा बाय बाय। गजल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली? सुनाने वाली हूँ कव्वाली। तो मोहम्मद रफी की आवाज़ में अमर अकबर एंथनी से पर्दा है पर्दा। एंड लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर विल बी गुलामी फिल्म से ज़िहाले मस्किन, लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ में। तो भाई हमारा गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विस जरूर सुनिएगा, लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। कल सुबह सवेरे आएंगे मस्ती भरे अंदाज में हमारे दीप राजा। वीकेंड क्रू रेडी है आप सबको एंटरटेन करने के लिए, ज़रूर सबका साथ दीजिएगा। एंड मंडे इवनिंग फिर से मुलाकात होगी आपकी और हमारी, और शुरू हो जाएगा नया सप्ताह, कुछ नए से आप, कुछ नए से हम। और हमेशा की तरह बस इतना कहेंगे, प्यार बहुत खूबसूरत है ना, तो प्यार दो, प्यार लो। और पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता होगा। भाई ज़िंदगी खूबसूरत है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, क्योंकि अगर उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने गए तो सभी ख़राब हो जाएगा, है ना। वीकेंड है तो बहुत अच्छी तरीके से इन्जॉय करिए, एंड जो भी अपनी मन में बातें हैं ज़रा बोल दीजिए, नोबडी कैन रीड योर माइंड एंड मन, है ना। On that note, I have to say, love you all. Take care. Here I say, bye bye.
3: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: Leica Gold. Leica Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
0: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
0: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: पैनल में फंक्शन रखा हुआ है।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
6: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती।
2: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
6: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
2: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel, Awarapan 2.
6: इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या मैं।
2: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: है लाइका गोल्ड।
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel at all protected.
4: September महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
5: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
6: ए तमे स्त्री अमने ऐसे रहे पुरुषों नाम खोटा होगो वालो बंद करो।
4: Comedy King निमेशा अने Queen of Comedy मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे। Super Hit गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे Risley, Pottersbar, Ilford, South London अने Luton मा। Tickets अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने on 07931534270। नाटक नु नाम याद रखो
7: पटेल भाई जन्मा।
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply.
10: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
11: 4 beers, please, garçon!
10: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
12: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
13: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
12: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
13: And you didn't pay those massive roaming charges?
12: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
14: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.